उन्होंने कहा था हमारी बिटिया मर चुकी है, लेकिन धरती स्वयं कांप उठी, निगल न सकी हमारी बच्ची के खून को। हवाएं थम गईं, बहा नहीं सकी उसकी आखिरी सांस को। आग राख हो गई, देख नहीं सकी हमारी जलती हुई बिटिया को।

आखिर में मौत खुद मर गई पर मार नहीं सकी उसको। जानते हैं हमारी बिटिया कौन है?

0: अगर बच्चों को तुम पसंद आ गए तो हमारी फैमिली कंप्लीट।
1: माँ को पटा लिया तो बच्चों की तो
2: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
3: हाथ में डाल, तू हाथ में उंगली डाल, भाभी की आंख में नहीं, मगर बस क्या में मगर।
4: अरे स्टैचू
3: चल गई,
4: खजाने का नशा कहाँ है?
5: नहीं बताऊंगा, जरा सीरियस की।
6: इसके बटवे में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है।
5: और किसके किसके पास मेरी शब्बो की फोटो है?

0: का है।
1: ये तो सांपों का चुम्माच भी निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है।
2: अरे हम है ना जी।
3: अरे तुम इसे तो बचना है।
4: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: चाय पियोगे भैया?
1: तू भूतनी की मुर्ज कली पाए।

हम अकाशवरम एवरंग गात कुरान आहिंद ए कुरान काफिर मी हुन्ना गद विगम वा अजाब हुट्टे हम अकाशवरम एई बारु गद फतेकं कशवरे।

भैया मैं द्वस आओ मुगे वगुत दिन वडिगतम वनी हम एकनी एकला अंगे शे एकला अंगे दिन वडिगतमा एकुगा मिनुई एव्विस मेवाय एग बोश गणकुन नुनिकुन्नाने थे आदि अंगहेन को मा बने नुआने थे आदि नुएस विहाने थे आदि तिमन रसकलांगे शरी कुकुरी मीहुं कोबा हैं एकलांगे गोआ लव्वा वही कुरव्वा द्वहु एवरेम बुनाने थे इबरस कलांगे शरी ककुआ कमं हेकुआ हम एककुएस तिमम मेंगे तेरेगा नुआ कम इबरस कलांगे तिमम में मिदनवी

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुंग अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिंका में ने अफन तिकन कोलन
1: तिको दुं हाउ दाई रंगल है तिहें मुन्ना आई कही आ हाल बला फे मुन्ना रकांकां को देन्ना हेदी मुन्ना वरहा उपावे

0: নিউলিমুং ওকে মন্দা সফা তাকে
1: দুনিয়া দেখে ফাওয়া পড়েতি পার তাকে
0: ইনসাফকে তারা দমমলি উম্মেদ বদল করলি শখসিয়াতুম
1: রেগনুকে হামহিমে কামুগা রাইয়েতুংগে হাল বেল্লুমা নুকমে ডাঙ্গুলু বি কোম্বে ফ্লিতো
0: রোমিনা ফারসিংগে বড়তি রাসকান্তা কুডকা কুজেসফি কোন্দিডারিতো
1: এই হামহিকানি তারিখ বিভাগতাকিনু
0: এই দুনিয়াকে চাট বদল করলি হাকিকি হাদিসাতকে
1: এ হাদিসাতকা এবাগতবনি নীলকুরগিয়া সেরিং ফেশিগিন আন্দালুসকে পর্বতকা হামিয়া পেতুরিফা কুরিপোশি কমমে হোম দুহে গেহেন্দনু আগগড় তিরিহু
0: রিপিট অঙ্গার দহগে বেন্দরু একেজ্জে হায়রু
1: আদি হোনি দহ গিরোসি হাগড় তিরিহু
0: এংহা সতরস্তেক সালিস নিউ কিলোহার্টস মিডিয়াম ওয়েভ আদি আড্ডিহেন মেগাহার্টস এফএম ব্যান্ড
2: রক্কা কো ফোন ফেসাই জাকাত দে কুম ওয়াজিব ওয়ানতা
3: হজ্জ দিউ মটা কা দক্কা ফোন ফেসাই জাকাত দে কেনতা
2: আতু গউ না গহনাই জাকাত দক্কা নি কিহিনে
4: তে হুরিয়া সওয়াতে গে জবাব এ প্রোগ্রাম কো
5: জাকাই
2: হোমধুগে হেন্দুনো দিহে কাটি তিরি হুম রিপিট হোমধুগে রে দিহে চায়রো আদি হনহির ধুগে মেন্দুরো একে চায়রো
6: ইংহা সতরস্তিয়ক সারস নুয়ে কিলো হার্টস মিডিয়াম ওয়েভ আদি আড্ডি হনুয়ে মেগাহার্টস এফএম ব্যান্ড হামাইকানি দিবি রাজ্যে গড়ো
7: ಚಾಗುವರಿ ಕಮಾಯಕು ಫಿಲಾವಳು ಕುರಗೆಂದಿಯುಮಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮುದರಿಸು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಗೊಯ್
8: ಫಿಲಾವಳು ರೇವುಮುಗ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಬಲನಿ ಕುದಿಂಗೆ ಬೇವೆರು ಇತರು ಕುರವೇಣಿ ಗೊತ್ತಕ
9: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗಣ್ಣ ದಿನಮಕ್ಕೆ ಮಿಸಮಾಣಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಮಿಯಾಬುಗೊಯ್
6: ಟಿಐ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮುದರಿಸಿಕೆ ಬುಣಿವೆ ಫದ ಇಲ್ಮಿ ವಾಹಕದ ಗೆನಿಸ್ತಿನಮ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯ ಗಡು ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ
10: ಎದುರು ಅಶಿ
8: ಚೌಗರಿ ಕಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮದೆ ಮಿಸ್ ಆಮುಗೊತೆಗ ಕೊಲ್ಲಾ ಕಾಂತ ತಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾಣಿ
11: ತಿಮಣ ಹಂದಾಂಗೆ ಬಹುಟೆ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಸ್ ಮೀ ತಿಮಣ ನೆಲ್ಲಿಯಂಗೆ ಅಂದಸ್ಕೊ
12: ಗೋಮೆ ಬಿನಾ ಕುರವೇಣಿ ಅಣ್ಣಂಗೊ ಜೀವಿತಪುಗೆ ಎ ದರಿವರುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿತ ಬಿನಾ ಕೊ
6: ತಜಿಬಾಕಾರು ಎದುರುಂಗೆ ತಜಿಬಾಯಿ ಅದುಗೆ ಲ ಸಿಕುಂಡಿತ ಬಟ್ಟಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವ
13: ಹರುದನ ಬಿಂಗಲಕ ಹರುದನ ಮುರಬ್ಬಿ
2: ಎದುರು ಅಶಿ ಬುರಾಸ್ಪತಿ ದುಹುಗೆ ಹಿಂದೂನು ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ರಿಪೀಟ್ ಹುಕುರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ಅದಿ ಹೊನಿಹಿರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ದಿಹೆ ಛಾಯಿರು ಎಂಹಾ ಸದರ ಸತೇಗ ಸಾಳಿಸ್ ನೋಯ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಂಟಿಹ ನೋಯ್ ಮೆಗ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

उन्होंने कहा था हमारी बिटिया मर चुकी है, लेकिन धरती स्वयं कांप उठी, निगल न सकी हमारी बच्ची के खून को। हवाएं थम गईं, बहा नहीं सकी उसकी आखिरी सांस को। आग राख हो गई, देख नहीं सकी हमारी जलती हुई बिटिया को।

आखिर में मौत खुद मर गई पर मार नहीं सकी उसको। जानते हैं हमारी बिटिया कौन है?

0: का है।
1: ये तो सांपों का चुम्माच भी निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है।
2: अरे हम है ना जी।
3: अरे तुम इसे तो बचना है।
4: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: चाय पियोगे भैया?
1: भूतनी की मुर्च कली पा।

0: रात के करीबन 1 बजे आप क्या कर रहे
1: हैं? घर पर थे रात को 1 बजे।
0: आप प्रूफ कर सकते हैं?
2: प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके?
1: तुम कभी बदल नहीं सकते।
3: बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते।
1: If there is a crime, there is evidence.
4: तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की?
5: पुलिस मैटर हो जाता ना।
6: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलाज।
1: ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
7: क्यों मिस्टर मेहरा, आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज?
8: क्या ये केस भी बाकी हाई प्रोफाइल मामलों की तरह होगा जिनका सर दबा दिया जाता है?
1: पापा, यू शुड हैव हर्ड देम टॉक अबाउट यू।
3: यू आर अ लूजर, एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस।
1: असली बात अगर बाहर आ गई तो
3: मैं गलती कर सकता हूँ।
1: यू आर माय टीचर, माय आइडल।
3: वाह इक्का, ये सब करने के बाद दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। कम से कम मुझे अपना इक्का तो खेलने दे।

0: ऑस्कर अवार्ड हासिल कोफावा मशहूर बतला केट विंसलेट नेटफ्लिक्स के कामयाब ड्रामा सीरीज एडोलेसेंस के देवन सीजन के मै रोल फेनिदान कमा रिपोर्ट तब्बुण पशाफी हुशाला देनी फातमित सीनत ऑस्कर अवार्ड हासिल को फा मशहूर बतला केट विंसलेट नेटफ्लिक्स के कामयाब ड्रामा सीरीज एडोलेसेंस के देवन सीजन के मै रोल फेनिगिन धानिकमा रिपोर्ट तपुन फशाफे मेल ऑनलाइन नो रिपोर्ट को फा गोतुगा एमी अवार्ड्स का बडु कामयाबी होदी मि सीरीज के देवन सीजन के मसेकेत मिहार दनि कुरिया आदि मि प्रोजेक्ट का केट विंसलेट बावरो मा गुले गुतु मशवरा तक कुरे मुन दाकमशा एना मि सीरीज आ गुलुमा केवार गैक कमिकमा मस्तर तकंपुने मीडिया रो रिलीज करी एडोलेसेंस के फुर्तम सीजन के बेलुंतिरिंगे बोडु मकबूल कमी होदी सीरीज स्टीवन ग्रहम मैरोलम फेनिकेन दिया ए सीजन का किया देनी एना के फुरावर के फिरहिं दरफुल क्लास कु जको मराली कम के तुहमत कुरेमु आयलाय कुरिमति वि हिद्दति हादसा त नुवा एमी अवार्ड हासिल करी मे सीरीज का मुश्तमा गे नुरंगलो आदतका सोशल मीडिया के नेदेवे असर त फद मुहिम मौलूतक अलेळ वाला फावे खबर तो बुनागुत का देवन सीजन कुरियदानी एंथोलॉजी फॉर्मेटा माने की फुर्तम सीजन के कैरेक्टर उनके बदल का मुड़ीं आ वाह के का आ कैरेक्टर उन तके मिस सीजन उन फेनिगें दाने सीरीज के उफेदुन तेरिंग कुरिंग हाम को फागुत का एमी हम बेनु मनी इंसानी तबीयता इश्तिमाई मसल तो गे मच बिना को तफात वाह कत के गिनिस्ते टाइटेनिका द रीडर फॉर द फिल्म तक दुनिया के मकबूल कं होदा फा केट विंसलेट की टीवी सीरीज तो गे कामयाब मसके तके कोफवा फन्नानी एगुतुं मेयर ऑफ ईस्ट टाउन ना द रेजिम एना दक्वादिं हुनरा गिनबे के तावरीफ लेबुनो मिगेतुरुं एनागे अमिला दर फ्लाय को कुलुनो आई एम रूथ ड्रामा गवेस वनी फुरावर कुदिन्ना सोशल मीडिया या गुलुं हुरे नफसानी मसलता वर फुरिहमे दक्वादिफा नेटफ्लिक्स उ मिहातन मिकन रस्मी को कशवर को दी फनुवे नमवेस केट विंसलेट फद हुनर वेरी बतलाय को मि सीरीज आ गुलदान कम गे खबर आय को बेलुं तिरिं तिबे वर पुडु इंतजार क
1: कोरियन गोइंग हफ्ता के वस्ते बेफ्लोना हमे अगिना सीरीज तक का फिल्म तक के अन्नान हफ्ता है एगे तेरेगा तफा जोन रातो के फिल्म तब सिमेने फिल्मी दुनिया रिलीज कुरन हम जे फावा एहेम फिल्म तक का सीरीज तो के वाहक तक आयको अन्न हफ्ता गवस अलगन बदल को लाना प्रोग्राम मुफद्दा मि होशाला दिनी अलगन अजीज फारूक अस्सलाम वालेकुम
2: फिल्मी दुनिया
3: එංහා 4340 kHz medium wave 8090 MHz FM band
4: දිවහි රාජ්‍යයේ අඩු

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य क्या डूं
3: ए कोड़ो को फाहत जहिला मा आहार में यहाँ कैरी गति में मी हम दुगो आने ये ना जा पिन्नम बनु फ्रेंड ने हिसाब एकन्ति बे मानी
4: आ
5: कोपा मिता हूँ ना डस्टबिन एहरी दो मैं वैसे डस्टबिन करनु लाम मारी
6: इंहा सतर से कसाड़ी सुनुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
7: दिवे हिराज्य के अड्डू

0: गांव में गहरे गए मिस ईट पुरी बिहार ऑर्डर कर रहे हैं ना
1: काफा ठीक है पॉकेट में तो न कौन था का फोन लानी काफा काफा पासपोर्ट तो नहीं फंगर ने को गिल जी आयो काफे कहने तो दनी फोश गिल जी आयो
2: कोको हासनु है काफे दनी हज्जन उम्रा प्लेन ना गया कौन कम का काफा हास वांबी इतुरु मालूमात एलाइड मोबाइल ऐप आदि my elite.mv
3: एलाइड आइलाया मरहबा

ইসলামী শরিয়াতকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একলাঙ্গে আলুতকুং একলাঙ্গে ফুরিহমুগুতুকা আলুবেতিউমটকা তাবাউমা রুহিবডিগিং খান্ড আলুওয়াফাওয়া মাতিবেরি মানহাজু দীনুগে হুকুমতকা দাউলেন হিংগুমুগে নিজাম এ শরিয়াতুকা ফুরিহমে লাওয়াফাওয়ে শিরুকুগে নুবাকমা জাহালাতুগে আন্দিরকমুগে তেরিয় ইনসানিয়াতু গরকু ওয়েফাওয়ানিকো ইসলামী শরিয়া বাওয়ালেবুনি ইনসানিয়ত বেনুয়া আদি এম্মে ফায়দা হুরি হুরিহা কমকাগে এই ইনসানি হায়াতুগে হুরিহা দায়রায়ে শামিলওয়া গুতুগে মতিন বাওয়ালে বিফাওয়া শরিয়াতে ইসলাম দিন বাওয়ালে বুনু ইরু ইনসানিয়তুগে হালাত উতি কম ফদেকত্তো বিসনালেন জেহে দরিন ম্যাম ফদ মিহুন্না খায়বেন কুরে নিকমেতিম ওয়ানি আনিয়া বিরিংগে ছাবু গুতকুগে দরুগা ಹಗ್ಗಕಿ ಕೊಂ ಎಚ್ಚಿಕ್ಕನ್ ದನ್ನನಿ ಮದುಬೈ ಆದುಲು ಇನ್ಸಾಫೆನ್ನೆ ಲೇ ಹೊರುವುಮ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾತ ನುಹಗ್ಗುಂ ಕೆವುಮ ಖಿಯಾನೆನ್ ಒತಿ ಇಂತಿಹಾಯ ಫೆತುರಿಫ ಅಂಹೆಂದರಿಂ ದಿರಿತಿಬ್ಬಾ ವಳ್ಳ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕಕಿ ಒಯ್ ಎಚ್ಚನ್ನು ಬಂಗುರಾಯಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ವೆರಿಯ ಜಿನೇ ಕುರುಮ ಫಾಹಿಷ್ ಕಂತತ್ತಕುಂ ಮುಜ್ತಮಾತಂ ಒತಿ ಗುಗುಮಾಲಾಫ ದೀಲತಿಕಮಾ ವಾದ ವಫಾತಿರುವುಮ ಗೆಫುಳಂ ಅನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಫೆಂದಿರುಮ ಮಿಫದ ಮದು ರೀತಿ ಆದತಕೆ ಮೆನುವಿನೆ ಮ್ಯಾವಿಗಿಂವ ಕಾಬಾಗ ಇತ ಸತೇಕ ಬುದು ಬೆಹೆಟ್ಟಿಫಾಹುರಿ ದುನಿಯ ಒತಿ